0: इससे क्या गृहधर भी आ गया।
1: दौलत
2: कौन
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको, चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

जागरण मन मंदिर में गाइए का माता आए का सितारा जागरण मन मंदिर में गाइए का माता आए का सितारा जागरण मन मंदिर में गाइए का माता आए का सितारा जागरण मन मंदिर में गाइए का माता आए का सितारा।

0: सूचना संयोजन मनोरञ्जन को अटल साहेनो यो हो रेडियो साहेनो 99.8
1: हार्दिक निमन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 देवघाट धाम चितवन आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ